ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, 9 अगस्त से 25 अगस्त तक मऊ बरेली परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई गई हैं।